0: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: As you say, sunshine.
2: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन words?
1: जहाँ से मैं आया हूँ.
2: Oh, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
1: प्यार.
2: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, you know?